दानीबाट भित्तुकतम सर्वकार मसुपूजे एवं यो भजते विष्णु रुद्रम दुर्गम गणाधिपम भास्करम च धियाम नित्यम।